मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतू रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शहर नो अवाज इतले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानू टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतो एक मात्र प्लेटफॉर्म इतले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। वेलकम टू दिस एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं 80s, 70s, 60s के जमाने की जुबली गर्ल के बारे में। इन्हें डैजलिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था। इनफैक्ट बॉलीवुड की यह पहली टॉम बॉय मानी जाती थी। नाम है इनका आशा पारेख जी। तो आज एक बार फिर से दिल से याद करेंगे चुलबुली सी इन अदाकारा को। इनके कई सारे गाने भी लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे रिजेक्शन बना इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन और ना एक्सेप्ट किए जाने के कारण इन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिल गई। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। फिलहाल सबसे पहला गाना आन मिलो सजना फिल्म से लता मंगेशकर जी और किशोर दा की आवाज में।
1: अच्छा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आशा पारेख जी की जिंदगी की कुछ ऐसी दबी हुई कहानियां आज मैं निकाल के लाई हूं आपके लिए, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आशा जी 16 साल की थी और उन्हें उनका पहला ब्रेक मिल गया था। वो डांसर तो हमेशा से थी ही, अदाकारा बहुत अच्छी थी, तो लोग उन्हें जाना करते थे। ये मूवी जिसमें उन्हें ब्रेक मिला था, वो मूवी थी विजय भट्ट जी की मूवी गूंज उठी शहनाई। लेकिन विजय भट्ट जी ने कुछ सीन शूट किए इनके साथ और उन्हें लगा कि ये स्टार मटेरियल नहीं है, दम नहीं है इस लड़की में, और उन्होंने आशा जी को मूवी से निकाल दिया। लेकिन मानिए किस्मत कैसे खेल खेलती है, तुरंत इस मूवी से छूटने के बाद ही उन्हें दिल देके देखो मूवी मिल गई, जो कि शम्मी कपूर जी, 10 साल बड़े उम्र में आशा जी से शम्मी कपूर जी के साथ में थी ये मूवी। एंड दिस वेंट ऑन टू बी अ सुपर डुपर हिट, जिसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। आशा जी आगे बढ़ती चली गई और शम्मी जी उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बन गए, और सबसे अच्छी जोड़ी भी इन दोनों की स्क्रीन पर लगती ही थी, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरी मंजिल इनकी सबसे बड़ी मूवी बनी थी वैसे, उससे गाना सुनाएंगे आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल कन्यादान फिल्म से गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में, उन खतों के नाम जो कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने तकिए के गद्दे के नीचे छुपा के रखे हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। लिख

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आशा पारिक जी स्पेशल है ये एपिसोड, मैं हूं रुचि आपके साथ। खुश मिजाज ये एक शब्द है जो कि हम आशा जी की जिंदगी और आशा जी की पर्सनालिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें जो मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आशा जी की जिंदगी पर बेहद सूट करती हैं।

है कुछ ऐसी छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को यार, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर हाल में खुश रहो। एक तरफ जहां आशा पारेख जी, जैसा मैंने कहा, इतनी खुश मिजाज इंसान, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग थे जो कि आशा जी से बहुत जला करते थे, स्पेशली उस जमाने की एक्ट्रेसेस। कौन थी ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वेलकम बैक वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं हूं रुचि आपके साथ। जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है जिंदगी में, वैसे ही दुश्मन भी हम बनाते चले जाते हैं, वैसे ही लोग हमसे जलने भी लग जाते हैं। मैं मानती हूँ जो इंसान सबसे ज्यादा सफल होता है उसके उतने ही कम दोस्त होते हैं। ऐसा ही कुछ आशा पारेख जी के साथ में भी हुआ। आज का हमारा ये शो जो है वो आशा पारेख जी पर आधारित है। उन्हीं के कुछ बेहतरीन गाने भी सुन रहे हैं आप। एक समय ऐसा था जब सिमी ग्रेवाल जी और अरुणा ईरानी जी आशा पारेख जी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि सिमी ग्रेवाल जी का मानना था कि दो बदन फिल्म में उनके रोल को छोटा कर दिया गया था, काट दिया गया था आशा पारेख जी के कहने पर। और ऐसा ही कुछ मानना था अरुणा ईरानी जी का भी कारवां फिल्म के टाइम पर। लेकिन मजे की बात यह है कि आशा पारेख जी खुद कहती हैं कि इन दोनों को अवार्ड्स मिले थे अपने रोल के चलते। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड सिमी ग्रेवाल जी को भी मिला था और अरुणा ईरानी जी का भी नॉमिनेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके रोल को सही ढंग से कटवाया था आशा पारेख जी ने। आशा जी कहती हैं कि अगर जैसा रोल पहले लिखा गया था वैसा ही मूवी में आ जाता तो लोगों को वो मज़ा नहीं आता। बताइए, तो ऐसी हैं हमारी आशा पारेख जी। इसी बात पर उन्हीं का एक बेहतरीन गाना आपको सुनाते हैं अगला, और कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मूवी थी जिसे नहीं करना, जिसे ठुकरा देना आशा जी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर रह गया। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी पर...

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आशा पारेख जी स्पेशल एपिसोड है ये। आशा जी ने ना तो कभी किसी से शादी की, ना ही किसी के साथ उनकी कोई बड़ी लव स्टोरी रही। एक अकेली चीज जिससे आशा जी को बेहद प्यार हमेशा रहा, वो था डांस। इसी डांस के चलते आशा जी ने लंबे समय के लिए देश छोड़ दिया था और अलग अलग कंट्रीज में जाकर के वो अपने शोज, अपने परफॉर्मेंसेस किया करती थी। और उसी के कारण इनके हाथ से एक बहुत बड़ी मूवी छूट गई थी और वो मूवी थी सीता और गीता। हेमा मालिनी जी जहां रातों रात सीता और गीता मूवी करके सुपरस्टार बन गई, वहीं आशा जी ने जब देश छोड़ा था तब वो बहुत बड़ी स्टार थी। लेकिन जब वो कुछ सालों के बाद अपने सारे डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह खत्म करके देश में वापस आई, तो जीनत अमान, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी जैसे बड़े बड़े स्टार्स खड़े हो चुके थे। कुछ समय तक के लिए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को फिर भी बनाए रखा, चलाए रखा, लेकिन फिर उन्हें मजा नहीं आया और उन्होंने एक्टिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोशल वर्क में आज भी कई लोग आशा पारेख जी का नाम बहुत ही इज्जत के साथ में लेते हैं। तो चलिए आशा जी के इसी प्यार भरी जिंदगी के नाम अगला गाना बजाते हैं, तीसरी मंजिल फिल्म से, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ आशा जी करियर। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।